Namaskar, Vanakkam to all our listeners out there. You're listening to MOP Community Radio 107.8. Our radio, our community, our pride. मैं आकांक्षा और मेरे सारे मित्र बीकॉम एएनएफ शिफ्ट वन से आज का एक भावुक विषय पर बात करने वाले हैं। वो है माँ, एक ऐसी बैंक जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं। जी हाँ, माँ सबसे ऊपर, हमारी माँ, हमें इस दुनिया में लाने वाली माँ।

0: अब मेरी एक दोस्त आफिया आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने वाली है।
1: मैं आफिया आपके सामने कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की दुल है।
0: वाह रे वाह, सही कहा आफिया ने। अब मेरी दोस्त श्री लक्ष्मी एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने वाली है।
2: मैं श्री लक्ष्मी आपके सामने छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ। प्यारी माँ, यह कहानी माँ की ममता की कहानी है। इस कहानी में माँ का नाम श्री देवी है और बेटा का नाम राम है। राम के छोटे उम्र में ही पिताजी चल बसे थे। श्री देवी अपने बेटे को बहुत प्यार से पालती थी, दूसरों के घर में काम करके अपने बेटे को पढ़ाती थी। राम हर एक जन्मदिन में अपनी माँ से तोहफा मांगता रहता था। तब श्री देवी कहती थी कि आपके 18 साल की उम्र में बड़ी तोहफा दूंगी। दिन पर दिन राम अपने 18 जन्मदिन का इंतजार में बैठा रहा था। कुछ सालों बाद राम का स्वास्थ्य खराब हुआ। डॉक्टरों ने चिकित्सा शुरू की। कुछ दिनों बाद जब राम होश में आया, तब पहले अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया। तब डॉक्टरों ने उसको एक चिट्ठी दी, जिसमें उनकी माँ ने राम के स्वास्थ्य के बारे में लिखा था कि जब वह पैदा हुआ था, तब से उसका हृदय बलहीन था। 18 साल में उसको हृदय का ऑपरेशन होना जरूरी था। तब उसे पता चला कि अपनी माँ ने उसको अपना हृदय दान दिया। राम रोने लगा। तब राम ने महसूस किया कि एक माँ का प्यार कितना महान होता है।
0: श्री लक्ष्मी की कहानी ने हमें बता दिया कि दिल तो केवल माँ ही त्याग कर सकती है। जी हाँ, अभी आप सबको हंसाने और आपकी सेहत बढ़ाने और मन लुभाने आ रही है शिवानी। नमस्ते, मैं शिवानी आपके सामने चुटकुले पेश करने जा रही हूँ। पप्पू बचपन में, पप्पू, मम्मी 5 रुपए दे दो ना। मम्मी ने उसे कहा, मेरे पास नहीं है, पापा से ले ले। पप्पू ने कहा, दे दो, फिर मैं तुम्हें पापा और काम वाली बाई के बारे में एक बात बताऊंगा। मम्मी, ठीक है ये ले और जल्दी बता। फिर पप्पू ने कहा, सुबह काम वाली बाई पापा से ये कह रही थी कि मेरी टंग बढ़ा दो। एक औरत बस स्टॉप पे खड़े होके अपने बच्चे को समझा रही थी कि जब कंडक्टर उम्र पूछे तो 5 साल ही बताना, किराना माफ हो जाएगा। बस में चढ़ के कंडक्टर ने बच्चे से पूछा, बेटा कितनी उम्र है? बच्चे ने प्यार से बोला, 5 साल। कंडक्टर ने बच्चे की मासूमियत पे हंसते हुए बोला, तो बेटा 6 साल के कब हो गए? बच्चे ने बोला, बस से उतरने के बाद। इसी रोमांचक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुरीला गाना पेश करने आ रही है गजनफर फातिमा।
3: नमस्ते, मैं गजनफर हूँ। आज मैं आपको माँ के बारे में एक प्यारा सा गीत सुनाने वाली हूँ।

0: माँ की दुआ तो हम सब को चाहिए, इस गाने ने तो मुझे भावुक ही कर दिया। अब माँ का खाना भी उसी तरह स्वादिष्ट होता है जिसके बिना हम सब जी नहीं सकते हैं। अभी ऐसे ही अपनी माँ की रेसिपी बोलते हुए हमारी दोस्त प्रेरणा आ रही है मैसूर पाक को बनाने का तरीका बताने।
1: नमस्ते, आज हमारा मुख्य विषय माँ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं प्रेरणा अपनी माँ की पसंदीदा मिठाई मैसूर पाक बनाने की विधि आप सबको बताऊं। पहले हमें मैसूर पाक बनाने के लिए चाहिए 1 कटोरी बेसन, 1.5 कटोरी शक्कर, 3 कटोरी घी और 1/2 कटोरी दूध। मैसूर पाक बनाने की विधि, इन सभी चीजों को कढ़ाई में डालिए और कढ़ाई को गैस पर तेज आंच पर चढ़ाइए, उसे लगातार हिलाते रहिए। 2 मिनट के बाद जब वो गर्म महसूस होने लगे तो आंच को धीमी कर दीजिए, फिर उस मिक्सचर को लगातार सेकते रहिए। उसी बीच में एक बड़ी थाली लीजिए और उस पर घी की परख लगाइए। जब उस मिश्रण में घी छूटने लगे और वो फीके गुलाबी रंग का हो जाए तो समझ लेना कि हमारा मिश्रण तैयार है। फिर उसे उस घी परख वाली थाली में डालकर जमा दीजिए। 1/2 घंटे के बाद उसे अपने मन चाहे आकार में काट दीजिए। उसके बाद 1/2 घंटे तक उसे ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो पूरी तरह ठंडा हो जाए तो समझ लेना कि आपका मैसूर पाक तैयार है। अब आप इसे परोस सकते हैं। आप इसे एक डिब्बे में डालकर 2-3 महीनों तक रख सकते हैं। ये 2-3 महीनों तक खराब नहीं होता है। अब जब चाहे ये बना सकते हैं। ये बहुत आसान भी है। आप भी इसे बनाने का प्रयास करें और अपनी माँ के चेहरे पर खुशी लाइए। धन्यवाद।
0: कदे फिदा जिंदगी जो बच्चों के नाम, मोहब्बत का नाम उनको हजारों सलाम। वही है जिसमें है हिम्मत गलतियों को अनदेखा करने की। जी हाँ, माँ। आज का मुख्य विषय वापस आप सबके सामने माँ। You're listening to MOP Community Radio 107.8, our radio, our community, our program. हमारे दोस्त आशना और विदुषी आज का मुख्य समाचार आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अगर आप आज सुबह पेपर ना पटवाए तो चिंता मत करो, ये है ना।
2: नमस्ते, मैं आशना और मेरी मित्र विदुषी, हम दोनों मिलकर आपको आज की ताज़ा खबर बताएंगे। आज का दिनांक 28 नवंबर। आज की ताज़ा खबर, प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी से मोबाइल बैंकिंग और ई कॉमर्स से खाने की वेदना की। वह चाहते हैं कि भारत को एक कैशलेस सोसाइटी बनाए। बिहार के मुख्यमंत्री ने भारत बंद से जुड़ने से किया इनकार। 4 महीने की छुट्टी के बाद कश्मीर में रविवार को भी विद्यालय रहेंगे खुले। एयरपोर्ट की पार्किंग हुई मुफ्त। बीजेपी ने के मुख्य ने कर्नाटका को बिना भ्रष्टाचार का राज्य घोषित किया। ओवर टू यू विदुषी।
3: सलमान खान ने ट्विटर पे दी शाहरुख खान को शुभकामनाएं। अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने की वोट गिनती करने की कामना। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को गरीबों के बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल करने से मना किया। रोजबर्ग बना नया वर्ल्ड चैंपियन फॉर्मूला 1 रेसिंग का। 13 साल के बच्चे ने बनाया नया गिनीज रिकॉर्ड जिसका अग्रबाल सबसे ज्यादा।
4: आपको हंसने हंसाने के लिए मैं शिवानी दोबारा अपने चुटकुलों के साथ लौटी हूँ। एक दिन सोनू थक कर घर आने के बाद अपनी माँ से पूछा, आज खाने में क्या बनाया है माँ? मम्मी ने जवाब दिया, लौकी की सब्जी। तुरंत सोनू छिड़कर बोला, फिर वही लौकी, मैं तो होटल जा रहा हूँ खाना खाने। पापा ने जोर से बोला, जरा मेरे जूते तो लाना। सोनू डर कर बोला, सॉरी पापा, मुझे समझ आ गया है कि लौकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, मैं यही खा लूंगा। तो पापा हंस कर बोले, ज्यादा बकवास मत कर, मैं भी तेरे साथ होटल जा रहा हूँ। अपने बेटे को हंसते हुए मन लगाकर काम करता हुआ देखकर माँ ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा ने बोला, पढ़ाई कर रहा हूँ माँ। माँ ने पूछा, लाजवाब, क्या पढ़ रहे हो? बेटे ने कहा, आपकी होने वाली बहू के मैसेजेस।
0: आपकी हंसी हम सबको प्यारी। अब माँ के विषय पे एक और एक कविता सुनाने आई मेरी प्रिय मित्र सिद्धि।
5: नमस्ते, मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसी होती है माँ, हमारी हर मर्ज की दवा होती है माँ। कभी डांटती है हमें तो कभी गले लगा लेती है माँ। हमारी आंखों के आंसू अपने आंखों में समा लेती है माँ। अपने होठों की हंसी हम पर लुटा देती है माँ, हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो तुरंत याद आती है माँ, खुद चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भुला देती है माँ। रिश्तों को खूबसूरती से निभा लेती है माँ, भगवान भी जिसकी ममता के आगे झुक जाए वो होती है माँ।
2: यह कविता ने साबित कर दिया माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपको पता है प्यार क्यों अंधा होता है? क्योंकि आपकी माँ ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपसे प्यार करने लगी। जी हाँ, हमारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। आपको पता है अक्सर लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। जी हाँ, माँ की नजरों से ही देखा जाए तो सच्ची में प्यार अंधा ही होता है, क्योंकि हमारी माँ ने हमारे चेहरे देखने से पहले ही हमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। अभी मेरी सखी राशि अपनी माँ और हमारे अंदर की माँ के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्पीच देने वाली है।
6: नमस्ते, मेरा नाम राशि। आज मैं अपनी प्यारी माँ के ऊपर चंद शब्द बोलने वाली हूँ। अब हम एक ऐसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं जिनके लिए चाहे हम 8 साल के हों या 80, बच्चे के बच्चे ही रहते हैं। जी हाँ, हम एक माँ के बारे में बात कर रहे हैं जो भगवान के दिए हुए हर तोहफे में से सबसे खास और सबसे खूबसूरत वाला है। हमारी माँ दिन रात मेहनत करती है, लेकिन वो ये मेहनत अपनी महानता के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए करती है। वो हमारे होमवर्क के पीछे ऐसे पड़ती है जैसे अगले दिन डांट हमें नहीं उन्हें पढ़ने वाली। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक छोटी सी बात समझ पाते हैं कि हमारी माँ हर कदम पर सही। फ्रैंकी में जैसे स्टफिंग नहीं भर जाती, ठीक उसी तरह हमारी माँ हमारे दिल के अंदर बस जाती है। जैसे कि मेरी माँ मुझसे कई ज्यादा आगे और कई ज्यादा मॉडर्न है। मुझे हर सुबह कॉलेज के लिए ये पहनो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये नेल पेंट ज्यादा सूट करेगा, ये जूते ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और कभी मैं उनकी बात ना मानूं और अपनी मनमानी करती हूँ, यार दो दिन मेरे लिए सबसे मुश्किल जाता है। और ये बातें हम सबके साथ होती है ना। हम अपनी मम्मा के साथ कितना भी लड़ लेकिन 15 मिनट से ज्यादा एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। हम घर के अंदर घुसते ही पहली पुकार माँ को देते हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या ना हो, पर उन्हें देखकर एक शांति से मिल जाती है। माँ वो इंसान है जो हमारे लिए रात के 2 बजे तक मास्टर शेफ बन जाए। चोट हमें लगती है पर दर्द उन्हें होता है। चाहे हमें एग्जाम में पास होने की चिंता हो या ना हो, पर वो हमारे लिए हर रोज प्रार्थना करती है। और सिर्फ हमारी माँ क्यों, हमारी बहनें भी हमारी माँ होती हैं, जिन्हें चाहे हम कितना भी मारे वो हमेशा हमारी गलती अपने ऊपर लेती हैं। हम चाहे जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी सफलताएं क्यों ना पा लें, लेकिन हमारी माँ जैसी ममता हमें कभी नहीं आ सकती। और इन सारी खुशियों के अलावा एक और खुशी हमें बहुत अच्छी लगती है, और वो है हमारी माँ को हंसता हुआ देख, खासकर जब वो हमारी वजह से हो। तो दोस्तों, उन्हें हमेशा एक जादू की झपटी देना जो उन्हें बहुत खुश करती है। और चाहे आप उनसे कितना भी लड़े, उनकी इतनी इज्जत करना हमारे ऊपर शर्मिंदा ना होना पड़े। और हमें हमारी माँ के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उन्हें हमेशा हमारे ऊपर गर्व हो।
0: आज अभी इस वक्त जहाँ भी हो जाओ, अपनी मम्मी को झप्पी दो और उनसे कहो थैंक यू, उनके बिना हम सब अधूरे हैं। अभी हमारी पूरी क्रू वृद्धि और गजनफर के साथ गाएगी मेरी माँ।
7: मैं

कर दे फिदा जिंदगी जो बच्चे के नाम, मोहब्बत का नाम उनको हजारों सलाम। वही है जिसमें है हिम्मत गलतियों को अनदेखा करने की। हमारी माँ, मैं आशा करती हूँ कि हमारी ये छोटी सी कोशिश कामयाब हुई और आप सबके प्रति आपकी भावुक भावना जाग उठी। तो जी हाँ, मैं आरजे आकांक्षा साइन ऑफ करती हूँ ये कहते हुए कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप सब भी अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। अभी वक्त आ गया है कि हम यह प्यार को बयां करें और उन्हें खुशी दें। तो जी हाँ, आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8। आर रेडियो